0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चलें?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब

0: आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आँख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आँखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
1: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
4: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
5: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी?
9: क्या आपने लगाई PNG?
10: हाँ जी।
9: क्यों जी?
10: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
9: और सेफ्टी
10: की चिंता स्टॉप,
9: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
10: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा। भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी, हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
12: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
12: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
13: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
14: अरे इसमें क्या है?
13: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
14: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
13: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
14: इनका एड्रेस क्या है?
13: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
0: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
0: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
6: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: अरे भाई क्या हुआ?
4: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
3: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
4: कॉल करें 9257036191।
5: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
6: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
7: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
6: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
8: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन।

0: इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया, कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900। क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
0: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
0: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
0: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
0: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 90.8 FM 24 और मैं हूं आपके साथ RJ साहिल और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो हमारे लिए खाना उगाता है लेकिन खुद अक्सर भूखा सो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बरसात के दर्द, किसानों की पुकार। इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
10: दूसरी ब्रांच A50, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। Armorzen, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ, और सो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। सुबह 4 बजे उठता था, बैलों के साथ खेत में जाना, यही उसकी जिंदगी थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी थी, पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा थी। रामलाल रोज कहता था, इस बार मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन और आगे हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जल्द लौटेंगे, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड।

0: अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
0: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
0: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
0: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
1: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए और फिर शुरू हो गई तेज बरसात। एक दिन, दो दिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामलाल की खड़ी फसल पानी में डूब गई। रामलाल बोले, हे भगवान, मेरी सारी मेहनत क्यों छीन ली। और रामलाल के घर में सन्नाटा था। बच्चे पुकार रहे थे, पापा अब स्कूल की फीस कैसे देंगे। और पत्नी गीता ने रामलाल को हौसला दिया। गीता ने बोला, हम फिर से शुरुआत करेंगे, आप हार मत मानो। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी बाकी थी और आगे हम

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM पटना, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड, नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। रामलाल जी, आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? रामलाल बोले, दुख इस बात का नहीं है फसल गई, दुख इस बात का है बच्चों का सपना टूट गया, बस इतना कि हम समय पर मदद लें। कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से मुआवजा आया। रामलाल ने फिर से हिम्मत जुटाई और दोबारा खेती शुरू की। और आगे हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जल्द लौटेंगे, सुनते रहिए 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
2: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। तो दोस्तों अब हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात। दोस्तों किसान कभी हार नहीं मानता, वे हर बार गिरकर फिर खड़े होते हैं। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत से बड़ी नहीं होती। मैं हूँ आपके साथ आरजे साहिल और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बरसात का दर्द, किसानों की पुकार। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
6: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
10: बोलिए मुझे जीजा जी।
11: क्या जी?
10: क्या आपने लगाई PNG?
11: हाँ जी।
10: क्यों जी?
11: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
10: और सेफ्टी
11: की चिंता स्टॉप,
10: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
11: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
10: हाँ जी,
11: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG। बिल्कुल सही, तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
12: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
13: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
12: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
13: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
12: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
14: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
15: अरे इसमें क्या है?
14: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
15: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
14: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
15: इनका एड्रेस क्या है?
14: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
16: एंड ऑप्टिकल्स
17: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
16: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01 4934 9322 या फिर 9034 9697 31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान।

0: इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 213, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान, तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्ते लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
8: बोलिए मुझे जीजा जी।
9: क्या जी?
8: क्या आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
8: क्यों जी?
9: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
8: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप,
8: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
9: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
8: हाँ जी
9: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG।
10: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
9: बिल्कुल सही।
10: तो आप भी अपनाओ PNG
9: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
12: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
12: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
13: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
14: अरे इसमें क्या है?
13: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
14: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
13: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
14: इनका एड्रेस क्या है?
13: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
1: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
2: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
1: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
3: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
5: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
4: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
5: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
6: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: अरे भाई, क्या हुआ?
4: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
3: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
4: कॉल करें 9257036191।
5: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
6: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
7: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से एक ऐसी पहचान हासिल की थी कि आम दर्शकों को तो छोड़िए, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई अभिनेता भी इनके व्यक्तित्व के लिए इनकी सराहना करते थे। दोस्तों, आज भले ही ये कलाकार हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है एक प्रेरणा की कहानी उन आउटसाइडर्स के लिए जो सपना देखते हैं बॉलीवुड के मुकाम तक पहुंचने का। एक आम आदमी बिना किसी मदद के, बिना किसी गॉडफादर के, किस तरह से केवल अपने टैलेंट के बल पर, अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाता है। परिवार की समस्याओं, जिंदगी के उतार चढ़ाव को झेलते हुए ये सब कुछ सिखाती है इस कलाकार की जिंदगी। दोस्तों, आज के हमारे बॉलीवुड कैफे के शो में हम बात करेंगे अभिनेता इरफान खान के बारे में, जिनका निधन अभी हाल ही के कुछ महीनों पहले हुआ है, और झांकेंगे इनकी जिंदगी में और निकालेंगे सक्सेस के कुछ मूल मंत्र। दोस्तों, अपने शो के सफर में हम और आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ फुटपाथ मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। दोस्तों, यही वो मूवी थी जिसमें इरफान ने शेख का किरदार निभाया था। चलिए आइए सुनते हैं इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, जरा देख मेरा दीवानापन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, बात कर रहे थे अभिनेता इरफान खान की, जिनका निधन अभी कुछ महीनों पहले 29 अप्रैल को हुआ। दोस्तों, अभिनेता इरफान खान का नाता राजस्थान राज्य के पठान परिवार से था। 7 जनवरी 1967 ये वो दिन था जब राजस्थान के जयपुर में एक पठान परिवार में जन्मे थे इरफान खान। इनकी माँ का नाम साइदा बेगम था और इनकी माँ का नाता इस राज्य के टोक हाकिम परिवार से था। इनके पिता का नाम यासीन है और वो एक कारोबारी थे जिनका टायर का व्यापार हुआ करता था। इरफान के 3 भाई बहन हैं, जिनमें से 2 भाई और 1 बहन है। दोस्तों, यहीं के एक स्कूल में इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली। वैसे दोस्तों, इरफान खान ने किस विषय में डिग्री हासिल की थी इसके बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जब ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MMA कर रहे थे तब उसी समय इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि इन्होंने इस ड्रामा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था और सौभाग्य से इनका ये आवेदन स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद इन्हें दिल्ली में स्थित एक्टिंग के लिए इस कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात ये कि इरफान खान कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ये मुकाम दिया। बताएंगे आपको क्यों इरफान खान एक्टर नहीं बनना चाहते थे और आखिर उनकी रुचि किस फील्ड में थी। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको पीकू फिल्म का ये बेहतरीन सा गाना, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अनुपम रॉय ने।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसिस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी

0: ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
1: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
2: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
3: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
2: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
3: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
2: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
4: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और शो चल रहा है बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, जैसा कि एक शॉकिंग फैक्ट के साथ मैं आपको छोड़ के गया था, और मैंने कहा था कि इरफान खान कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना कुछ और ही था। दोस्तों, आपको इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। इरफान खान जब अपनी डिग्री ले चुके थे तो उनका एक सबसे अच्छा दोस्त सतीश शर्मा हुआ करता था, और दोनों ही क्रिकेट में बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों, इरफान का झुकाव क्रिकेट की तरफ था और वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनके दोस्त, जिसका अभी हमने जिक्र किया, उन्हें साथ में को CK नायडू प्रतियोगिता के लिए 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखने के लिए चुना गया था। पर दुर्भाग्य से पैसे ना होने की वजह से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां पहुंच ना पाए। और दोस्तों, इस इंसिडेंट ने जिंदगी ने उन्हें एक नई राह की ओर मोड़ दिया, और वो बन गए बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता। वेल दोस्तों, बताएंगे आपको इरफान के संघर्षों और उनके करियर के बारे में भी, और उनके कुछ किस्से कहानियों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी सुनवाते हैं आपको 2017 में आई उनकी एक फिल्म, हिंदी मीडियम का एक बहुत ही बढ़िया सा पंजाबी गाना, गुरु रंधावा की आवाज में। इस गाने को सुनिएगा, वापस मुलाकात होगी 90.8 FM 24 पर। सुनते रहिएगा आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
2: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
1: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
1: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललंकार, CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
12: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, अब तक की जैसा हमने आपको बताया कि किस्मत ने उनके रास्ते को बदल दिया और ये रास्ता ले गया उन्हें एक आर्टिस्ट बनने की ओर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इरफान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की और इस पढ़ाई को पूरी करने के बाद अपनी आंखों में एक बेहतर एक्टर बनने का सपना लेकर के मुंबई चले आए। यहां आकर इरफान ने फिल्मों में काम की खोज शुरू की। इरफान के करियर के शुरुआती दिन दोस्तों काफी संघर्ष भरे थे। इन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी और ऐसे में रास्ता बचता था टीवी सीरियल का, और बुद्धिमत्ता इसी में थी, टीवी सीरियल के जो छोटे मोटे रोल मिल रहे थे उसी से अपने करियर की शुरुआत की जाए। इरफान ने टीवी सीरियल के छोटे मोटे रोल में काम करना शुरू किया और इस तरह से इरफान के करियर की शुरुआत बतौर एक जूनियर एक्टर से हुई। इरफान कई हिंदी धारावाहिकों चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांत, श्रीकांत, मानो या ना मानो धारावाहिकों का हिस्सा बने। दोस्तों बात करें अगर इरफान के फिल्मी करियर की तो साल 1988 ये वो साल था जब सलाम बॉम्बे में इरफान को एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश इरफान के इस रोल को फिल्म से हटा दिया गया था। इस फिल्म के बाद इरफान ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए, लेकिन साल 2001 में आई द वॉरियर फिल्म ने इनकी जिंदगी बदल दी और इस फिल्म से पहचान मिली इरफान खान को। ये एक ब्रिटिश फिल्म थी जिसका निर्देशन आसिफ कपाड़िया ने किया था। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की गई थी और इस फिल्म के बाद साल 2004 में आई हासिल फिल्म में इरफान को एक नेगेटिव किरदार में देखा गया। इस किरदार को इरफान ने बखूबी निभाया। वेल दोस्तों बात करेंगे इरफान के आगे के सफर के बारे में, लेकिन अभी हम आपको सुनवा देते हैं इरफान खान की साल 2009 में आई बिल्लू बार्बर मूवी का ये बेहतरीन सा गाना खुदाया खैर। दोस्तों जिसे गाया है सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर और मुनाली ने। इस गाने को सुनिएगा। वापस मुलाकात होगी यही 90.8 FM 24 के शो बॉलीवुड कैफे में।

0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
1: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
4: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, इरफान खान के फिल्मी करियर के अभी तक के सफर में उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुआ था, लेकिन साल 2005 ये वो साल था जब बतौर लीड रोल इरफान की पहली फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था रोग। इस फिल्म में इरफान ने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म कामयाब साबित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इरफान के अभिनय ने सभी को हैरान कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इरफान के अभिनय की खूब तारीफ की। लोगों का कहना था कि इरफान की आंखें दमदार अभिनय करती हैं। इस फिल्म के बाद इरफान को कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 2007 में आई मल्टी स्टारर फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, इस फिल्म को भला किसने नहीं देखा। ये एक ऐसी फिल्म थी जो मुंबई में रह रहे अलग अलग प्रकार के लोगों की जिंदगी को दिखाती थी, और इस फिल्म में उनकी जोड़ी कोंकणा सेन के साथ नजर आई थी। लाइफ इन अ मेट्रो का हिस्सा बनने के बाद एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, हैदर, पीकू, तलवार, जज्बा, हिंदी मीडियम जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिससे इरफान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना वो कई सालों पहले देख रहे थे। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। वेल दोस्तों, बात करेंगे इरफान खान के निजी जिंदगी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं लाइफ इन अ मेट्रो मूवी का इन दिनों गाना सोहम की आवाज में। सुनिएगा इसे, वापस लौटते हैं 90.8 FM 24 पर, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
6: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
5: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
5: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
7: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
8: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
9: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135, भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983-04010 पर।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कांटेक्ट करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी कांटेक्ट 7230011191 और 9785013999।
12: बोलिए मुझे जीजा जी।
13: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
12: हाँ जी।
13: क्यों जी?
12: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
13: और सेफ्टी
12: की चिंता स्टॉप
13: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
12: मतलब
13: एक्स्ट्रा खर्चा
12: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
13: हाँ जी
12: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
13: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
12: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
13: बिल्कुल सही।
12: तो आप भी अपनाओ PNG
13: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
14: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
15: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
14: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
15: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
14: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
16: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
17: अरे इसमें क्या है?
16: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
17: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
16: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
17: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
16: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
17: इनका एड्रेस क्या है?
16: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
18: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका 90.8 FM 24 पर और आप इस वक्त सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इरफान खान की निजी जिंदगी के बारे में भी बताऊंगा, तो आपको बता दूं इरफान खान ने 23 फरवरी 1995 को सुतापा से शादी कर ली थी और दोस्तों ये एक प्रेम विवाह था। दोस्तों ये प्रेम कहानी बनी थी उस वक्त जब इरफान NSD में एक्टिंग की डिग्री ले रहे थे, तब उन्होंने फिल्म लेखक और उन्हीं की क्लासमेट साथी सुतापा सिकदर से शादी कर ली। इरफान के दो बेटे भी हैं, बाबिल और आयान। और दोस्तों इंटरव्यू के दौरान उनकी वाइफ सुतापा ने एक राज खोला था। उनकी वाइफ का कहना था कि इरफान हमेशा फोकस्ड रहते हैं और उनको याद है कि वो घर आकर सीधे बेडरूम जाते हैं और किताबें पढ़ने लगते हैं। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई, इरफान ने अपने नाम की स्पेलिंग में एक R एक्स्ट्रा जोड़ दिया था क्योंकि उनके मुताबिक उनके नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा R लगाने से नाम के उच्चारण में जो ध्वनि निकलेगी वो उन्हें बेहद पसंद थी। और उन्होंने अपने नाम के पीछे के सरनेम को भी हटा दिया था, वो चाहते थे कि लोग उन्हें उनके काम से पहचाने ना कि उनके वंश से। खैर दोस्तों अपने इस सफर में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्कैटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे। दोस्तों, स्लम डॉग मिलियनर और लाइफ ऑफ पाई जैसी कई फिल्मों में ऑस्कर अवार्ड जीत चुके इरफान भारत के पहले ऐसे अभिनेता हुए जो दो ऑस्कर विजेता मूवी का हिस्सा बने। दोस्तों, एक बार का वाकया है, इरफान खान को अपने नाम के पीछे लगे खान सरनेम की वजह से थोड़ी सी परेशानी भी हुई थी और ये परेशानी हुई थी अमेरिका के एयरपोर्ट पर। दोस्तों, उनके सरनेम की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और बहुत देर तक पूछताछ होती रही थी। बाद में इन्हें जाने दिया था, लेकिन दोस्तों इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभिनेता होने के बावजूद वक्त का पहिया घूमते हुए उन्हें ले आया एक ऐसी सिचुएशन में जहां उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इरफान खान एंडॉन ट्यूमर नाम की बीमारी से ग्रसित हो गए। उन्होंने अपने फैंस को ट्वीट करके कहा कि वो वक्त आने पर उन्हें जो बीमारी हुई है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। हालांकि दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से तो नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इशारों इशारों में अपनी अंदर की बातें बता दी थी। अपना इलाज करवाने के लिए मुंबई से बाहर जाने की खबर जब फैंस को मिली तो फैंस को काफी ज्यादा धक्का पहुंचा और हर कोई इनके सही होने की कामना कर रहा था। और दोस्तों, इसी बीमारी के चलते 29 अप्रैल साल 2020 को मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में इरफान ने अपनी अंतिम सांसें ली। हालांकि वहां पर संक्रमण की वजह से भर्ती हुए थे। और दोस्तों बड़ी ही दुख की बात कि 4 दिन पहले ही उनकी माता का जयपुर में निधन हुआ था, जिसके अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं जा पाए थे इरफान खान, क्योंकि उस समय देश में तालाबंदी चल रही थी, लॉकडाउन का समय था कोविड-19 की वजह से। और दोस्तों इस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक और सितारा नीले आकाश में खो जाता है। वेल दोस्तों वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का और अब हम चलते हैं, पर आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। और छोड़े जाते हैं आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे से गीत।

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ.

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
4: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
9: 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
10: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
11: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी

0: विशेषज्ञता।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
0: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर 00।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
4: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
4: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहां उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावलो हरियाणा। संपर्क करें 999-2533-611 या फिर 9354-898-5521 पर। अंशुल

0: ज्वेलर्स जेवर फॉर एवर।
1: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
2: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
2: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
4: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
5: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
7: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
7: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास। बाईपास भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: बोल लल्लन टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413

जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS

0: ब्रेसेस ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
1: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सब
2: फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
4: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
1: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
1: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
3: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
4: बोलिए मुझे जीजा जी।
5: क्या जी?
4: क्या आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
4: क्यों जी?
5: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
4: और सेफ्टी
5: की चिंता स्टॉप,
4: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
4: भी स्टॉप।
5: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
4: हाँ जी,
5: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG।
4: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
4: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
6: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
7: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
6: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
7: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
6: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
8: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
9: अरे इसमें क्या है?
8: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
9: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
8: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
9: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
8: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
9: इनका एड्रेस क्या है?
8: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
7: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
9: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
10: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
5: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
4: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
5: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
11: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक। गुरु
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ RJ भावना और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञा। आज हम बात करेंगे भारत के वीर पुत्रों के बारे में। देश में यूं तो ना जाने कितने वीर और महान योद्धा थे जिन्होंने भारतीय अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मगर भारत के वीर पुत्र उस बब्बर शेर की तरह थे जो अपराजित रहकर विदेशी आक्रमणकारियों, क्रूर मुगलों से लड़ते रहे। मुगल बादशाह अकबर भी उनके नाम से कांपते थे। ऐसा एक राजा जो देश के सबसे वीर योद्धाओं में से एक था। राजपूतों में अपने पूर्वजों के जैसे ही उनका अंदाज था। उन्होंने वीरता से अपने प्राण इस देश की रक्षा के लिए त्याग दिए। नमन है ऐसे निडर महान योद्धा को जो सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। कौन था भारत का वो वीर पुत्र, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल शो की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक के साथ। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MT रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा। गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। Armorzen, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे भारत के वीर पुत्रों के बारे में, उनके साहस और निडर के बारे में। तो हम आपको बता दें कि भारत का वो वीर पुत्र जिसकी हम बात कर रहे थे, उनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनका जन्म हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कौर थी। वे राणा सांगा के पोते थे। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में और भी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000041 पर।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप, भारत के वीर पुत्र के बारे में। महाराणा प्रताप का निजी जीवन। महाराणा प्रताप की पहली रानी का नाम अजबंदे पुनवार था। इनके दो पुत्र थे, अमर सिंह और भगवान दास। अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के देहांत के बाद राजगद्दी संभाली थी। इसके अलावा प्रताप की 10 और भी पत्नियां थी। प्रताप की कुल 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह की भी और पत्नियां थी, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनके पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तर अधिकारी बने। इसके अलावा उनके 2 पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे, लेकिन प्रजा और राणा दोनों की ही प्रताप को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा थी, इसलिए यह तीनों भाई प्रताप से घृणा भी करते थे। तो ऐसे में कैसे हुआ महाराणा प्रताप का राज तिलक, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल के लिए एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए, ओनली ऑन रेडियो 90.8 FM 24 पर। आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सब

0: आपकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
1: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
0: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्क। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के राज तिलक के बारे में कि कैसे हुआ उनका राज तिलक। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। तब मेवाड़ भी उनके पास ही था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र को उनकी गद्दी सौंप दी गई, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी दी। मेवाड़ की गद्दी पाते ही कैसे राजपूत महाराणा प्रताप के विरुद्ध हो गए, ये सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
7: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के राजा बंदे ही कैसे सारे राजपूत उनके खिलाफ हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले काफी राजपूत अकबर के आगे हथियार डाल चुके थे, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप के खून का दुश्मन बन गया था। अकबर ने राजा मानसिंह को अपनी सेना का सेनापति बनाया। इसके अलावा टोडरमल, राजा भगवान दास, सभी को अपने साथ मिलाकर 1576 में प्रताप और राणा उदय सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें मुगलों और राजपूतों के वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई राजपूतों ने प्रताप से गद्दारी की और अकबर का आधीनतम स्वीकार किया। 1556 में राजा मानसिंह ने अकबर की तरफ से 5,000 सैनिकों का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी पर पहले से ही 3,000 सैनिकों को तैनात कर युद्ध का बिगुल बजाया। वहीं मेवाड़ियों के साथ भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ निभाया, जिनका मुख्य लक्ष्य अपनी मातृभूमि को सुरक्षित करना था। वीरों ने महाराणा प्रताप का आखिरी सांस तक साथ दिया। हल्दी घाटी का यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अन्य के अभाव में प्रताप युद्ध हार गए। युद्ध के आखिरी दिन जौहर प्रथा को अपनाकर सभी राजपूत महिलाओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और अन्य सेना और अन्य ने सेना के साथ लड़कर वीरगति को प्राप्त किया। राणा उदय सिंह महारानी धीरबाई और जगमाल के साथ प्रताप के पुत्र भी पहले ही चित्तौड़ से दूर भेज दिए गए थे। युद्ध के एक दिन पहले प्रताप को अजबदे को नींद की दवा देकर किले में गुप्त रूप से बाहर कर दिया गया। अकबर ने भले ही हल्दी घाटी का युद्ध जीता मगर वह महाराणा प्रताप को हरा कर अपने कब्जे में न कर सका। अकबर को इस बात का मरते दम तक दुख रहा कि वह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सका। युद्ध के बाद कई दिनों तक जंगल में जीवन जीने के बाद मेहनत के साथ प्रताप ने नया नगर बसाया जिसे चावंड नाम दिया गया। कैसे हुई महाराणा प्रताप की मृत्यु ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
3: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
8: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
7: हाँ जी,
8: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी CNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञा। तो हम बात कर रहे थे कैसे हुई महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप का निधन 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 को हुआ था। वह जंगल में एक दुर्घटना की वजह से घायल हो गए थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ धरा को स्वतंत्र कराया और यही कारण है कि आज तक कोई महाराणा प्रताप को डरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप की भले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत में उनके जैसा कोई भी शूरवीर पैदा नहीं हो पाया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो आए।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम, और आज हमारे साथ हैं T32 दांतों के अस्पताल से डॉक्टर संदीप। जैसा कि दोस्तों डॉक्टर संदीप के साथ में हमने पहले भी दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित कई विषयों पर जानकारी ली है, और आज इस श्रृंखला में, आज के इस एपिसोड में डॉक्टर साहब पायरिया के विषय पर जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है 90.8 FM 24 के स्टूडियो में।
4: जी नमस्कार, मेरे सभी श्रोताओं को आपका हार्दिक आभार, जिनके थ्रू मैं इतनी अच्छी जिनको मैं इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, आप सबका काफ़ी आभार।
3: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आप काफी इस सफर में हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे विषयों पर आप पहले से भी जानकारी दे चुके हैं श्रोताओं को, और आज पायरिया के विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पायरिया ये किस तरह की बीमारी है, और आखिर पायरिया की जो बीमारी है भाई, वो कैसे देख करके पता चलता है कि इस इंसान को पायरिया है?
4: पहले तो मैं ये बता दूं सनी, हमारी जो ये पायरिया की बीमारी जिस पे आज हम बात करने वाले हैं
3: जी,
4: ये सबसे कॉमन बीमारी है दांतों की, जो हमारे इंडिया में हर तीसरे व्यक्ति को है
3: जी।
4: हर तीन में से एक व्यक्ति को पायरिया की समस्या होती है, किसी को थोड़ी कम है, किसी को थोड़ी ज्यादा है, लेकिन होती है
3: जी।
4: अब आते हैं इसकी बात पर कि भाई ये पायरिया होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पायरिया अगर समझें तो कुछ भी नहीं है, और अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है या ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये बहुत कुछ है। इवन इतनी कुछ है कि इसकी वजह से आपके मुंह में प्रेजेंट, आपके मुंह में उपस्थित एक एक दांत को निकालना पड़ जाता है
3: जी। तो ये तो बहुत मतलब एकदम डरावनी बात है, आप मुझे डरा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं श्रोताओं को भी डरा रहे हैं, क्योंकि भाई मुंह में अगर दांत ही नहीं रहेंगे तब तो फिर कैसा होगा भाई, कैसे हम खाने पीने की चीजों का आनंद लेंगे।
4: यही रिजल्ट होता है पायरिया के अंत में। अगर पायरिया की कंडीशन बिगड़ जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में दांतों को निकालना ही पड़ता है ताकि और चीजों को बचाया जा सके
3: जी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे म्यूजिकल ब्रेक की ओर। कुछ ही देर के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे डॉक्टर साहब से आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है जब दांतों को, जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वैसे सुनने में तो बड़ा ही भयानक लग रहा है, और जो कल्पना मेरे दिमाग में चल रही है वो भी बड़ी भयानक बन रही है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज का समाधान होता है, हर चीज का इलाज होता है, और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है पायरिया का। आइए सुनते हैं बहुत अच्छे गाने को, कुछ देर के बाद वापस लौटेंगे। सुनते रहेगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप इस वक्त दोस्तों सुन रहे हैं मेरे यानी RJ सनी के साथ तंदुरुस्ती मौज मस्ती का प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हैं T32 दांतों के अस्पताल से डॉक्टर संदीप जी, डेंटल सर्जन। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको पायरिया के विषय पर कुछ जानकारी दी थी और बताया था कि पायरिया किस तरीके की बीमारी है। भाई उन्होंने काफी डरावनी बात की थी कि अगर पायरिया में ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि आपके सभी दांतों को निकालना पड़ जाता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति, हालांकि मैं नेगेटिव बात से शुरुआत नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि जिक्र हो चुका है तो इसको जानना भी जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी इसकी गंभीरता के बारे में बताएं।
12: जी, पायरिया एक ऐसी समस्या है जिसका आम अनुमान जो मैंने आपको बताया कि हर तीसरे इंसान को भारत में है
11: जी,
12: लेकिन इसका पता नहीं चलता है। इसका पता कब चलेगा? जब आपके मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लग जाएगी, या आपके मुंह से या मसूड़ों से जो है पस डिस्चार्ज होने लग जाएगा, जो एक मवाद है वो पड़ने लग जाएगी। उस टाइम पर पे जाके पेशेंट को ये समझ में आता है कि हाँ यार मुझे कुछ दिक्कत है
11: जी,
12: तब वो डेंटिस्ट के पास रश आउट करता है या जाता है। तो उस केस में जब मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन जो दांत निकालने वाली है ये तब आती है जब आप पायरिया की लास्ट स्टेज पर हैं
11: जी।
12: ऐसा नहीं है कि आज आपको, अगर आज ही पायरिया हुआ है और आज ही आपको सारे दांत निकालने पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें जाकर के आज अगर आपको पायरिया हुआ है तो अनुमान 2 से 3 साल लग जाते हैं आखिरी स्टेज पर पहुंचने में
11: जी।
12: जब आप आखिरी स्टेज पर पहुंचेंगे तब ये कंडीशन आएगी कि आपके सारे दांत निकालने पड़ जाएंगे
11: जी।
12: तो ये है बस
11: जी। दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि जब लास्ट स्टेज होती है तो उस वक्त स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और उस वक्त आपके जो दांत हैं उनको निकालना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब जानेंगे कि पायरिया के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, श्रोताओं को बताइएगा।
12: जी, पायरिया के जो शुरुआती लक्षण हैं अगर हम इनकी बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मसूड़ों में थोड़ी बहुत सूजन आ गई है
11: जी,
12: ब्रश करते हुए जी खून निकलता है
11: जी जी,
12: है ना, और मुंह से दुर्गंध आनी चालू हो गई है, एक अनप्लीजेंट सी स्मेल जो है हमारे मुंह में ऑलवेज हर टाइम रहती है, तो उस केस में आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मुझे पायरिया की समस्या स्टार्ट हो चुकी है
11: जी।
12: ऐसा नहीं है कि पायरिया खत्म हो चुका है, नहीं, अभी शुरुआत हो चुकी है और इसकी रोकथाम एवं उपचार करवा करके आप इस कंडीशन से, इस बीमारी से बहुत जल्दी बच सकते हैं।
11: श्रोताओं जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आइए बढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे म्यूजिकल ब्रेक की ओर, कुछ ही देर के बाद वापस लौटेंगे। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, डॉक्टर साहब से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8432665588 पर। आइए सुनते हैं इस गाने को, वापस लौटेंगे, सुनते रहेगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना।
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट

0: पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
1: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप इस वक्त दोस्तों सुन रहे हैं तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी आरजे सनी के साथ। और जैसे कि दोस्तों आज के तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम में आज हम पायरिया के विषय पर जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ T32 दांतों के अस्पताल से डॉक्टर संदीप डेंटल सर्जन उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि जब पायरिया होता है तो उसके शुरुआती लक्षणों में मुख से बदबू आने लग जाती है, तो भाई ये बदबू क्यों आती है? क्योंकि बदबू का जो आने का मेरे ख्याल से जो ज्यादातर रीजन जो आम लोग समझते हैं कि भाई किसी चीज में जब सड़न होती है तब बदबू आने लग जाती है, तो क्या कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसी चीज है जो दांतों में हो जाती है जिसकी वजह से बदबू या दुर्गंध आती
4: है? जी सनी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी कोई खाना खाते हैं
3: जी,
4: तो हम उसको चबा चबा करके खाते हैं,
3: बिल्कुल,
4: और उसके बाद उसको हम अंदर निगल जाते हैं
3: जी।
4: लेकिन निगलने से पहले हमारे मुंह में उसकी एक लोधी एक जम बनता है जिसको हमें निगलना होता है
3: जी।
4: तो लार और खाने का जो मिश्रण बनता है, जो एक प्रोसेस च्यूइंग के थ्रू बनता है
3: जी,
4: उसमें क्या होता है कि बाद में हमारे मुंह के अंदर कुछ रेमिनेंट्स यानी कि कुछ बाकी के पदार्थ रह जाते हैं, जो हमारा अनच्यू खाना है, जो खाने के पदार्थ हैं वो लगे रह जाते हैं
3: जी।
4: और ये खाने के जो छोटे छोटे छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं
3: जी,
4: ये कहाँ जा करके बैठ जाते हैं? जो हमारे दांत और मसूड़ों के बीच की जगह है उसमें
3: जी।
4: तो हमारे दांत और मसूड़ों के बीच में काफी कम स्पेस होती है, जगह होती है, जिसमें जाकर के ये खाना और ये खाने के पार्टिकल्स जो हैं वो वहां पे फंसे रह जाते हैं
3: जी।
4: और जो ब्रशिंग के बाद भी, नॉर्मल ब्रशिंग के बाद भी कई बार नहीं निकलते हैं
3: जी।
4: तो ये जो खाना है ये धीरे धीरे धीरे धीरे वहां पे सड़न प्रोड्यूस करता है, मतलब सड़न बनाता है, प्लस साथ में वहां पर के जो भी बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप होते हैं इस खाने में
3: जी।
4: जैसे कि भाई आपका अगर सेल्युलोस है तो वो डिवाइड होगा एक एसिड में और एक आपका सेल्युलोस प्रोटीन में, तो वो जो एसिड है वो बाद में जाकर के दुर्गंध प्रोड्यूस करता है ताकि उसका बाई प्रोडक्ट बनता है ना। तो इसी तरीके से जो भी खाना आप खा रहे हैं, जो भी आप खा पी रहे हैं, उसके साथ क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट बनता है बाद में जो आपके मसूड़ों में बना रह जाता है। उसकी वजह से आगे चल करके अगर वो साफ नहीं होता है तो ये दुर्गंध बनाता है आपके मुंह में।
3: ओके जी, जैसे कि दोस्तों डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हम खाना खाते हैं
4: जी,
3: वो जो खाना होता है वो दांतों में रह जाता है, ब्रशिंग के बाद भी नहीं निकल पाता और इस वजह से सड़न पैदा हो जाती है। फिर कुछ उन्होंने जिक्र किया कि इसी वजह से ही जो है वो बदबू आना शुरू हो जाती है। तो पायरिया की जो शुरुआती वजह है वो भी क्या इसी वजह से ही पायरिया पनपता है?
4: जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पायरिया की कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है
3: जी।
4: जैसे कि टेढ़े मेढ़े जिनके दांत होते हैं
3: जी,
4: अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो वहां पे खाने के पार्टिकल्स नॉर्मल दांत से ज्यादा फंसेंगे
3: जी,
4: और जब ज्यादा फंसेंगे तो वहां पे ज्यादा दुर्गंध होगी, जब ज्यादा दुर्गंध होगी तो वहां पे ज्यादा इन्फ्लेमेशन यानी कि मसूड़ों में सूजन वगैरह आ जाएगा
3: जी,
4: और वहीं से पायरिया की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी
3: जी। श्रोताओं, फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने की ओर। कुछ ही देर के बाद वापस लौटेंगे, तब तक आप चाहें तो आपका कोई सवाल हो तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं 8432665588 पर। सुनते रहें 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
10: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर एक बार फिर से। और जैसा कि दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी आरजे सनी के साथ। और अभी इस वक्त हमारे साथ हैं T32 दांतों के अस्पताल से डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप, और आज हम उनसे जानकारी ले रहे हैं पायरिया के विषय पर। तो पायरिया किस तरीके की बीमारी है इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बताया था, और पायरिया के शुरुआती लक्षण क्या हैं इसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे। अभी तक उन्होंने बताया था कि जब मुख से बदबू आने लग जाती है तो आप समझ जाएं कि ये पायरिया की शुरुआत है, हो सकता है कि ये पायरिया पनप रहा हो। तो डॉक्टर साहब मैं और भी बातें आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआती लक्षणों में इसके अलावा भी कोई लक्षण है क्या जिससे ये पता चल सके कि भाई इंसान को पायरिया होने की गुंजाइश है।
13: जी, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि पायरिया एक बीमारी नहीं है
12: जी।
13: पायरिया एक समूह है बीमारियों का
12: जी,
13: जिसमें ना बहुत सारी बीमारियां मिलकर के पायरिया जैसी कंडीशन को डेवलप करती हैं, मतलब बनाती हैं। तो क्या होता है जब पायरिया एक कंडीशन, पायरिया जो है वो किस तरीके की बीमारियों से मिलकर के बनता है, जैसे एक मैंने आपको बताया कि मुंह से दुर्गंध आती है, दूसरा ये होता है कि भाई आपको मसूड़ों के अंदर से खून आने लग जाता है
12: जी,
13: तीसरा एक ये होता है कि भाई आपको जो है ये मसूड़ों के अंदर से जैसे खून आ रहा है और आपके दांत जो हैं वो हिलना चालू हो गए हैं
12: जी,
13: चौथा ये होता है जो आपके मसूड़े मतलब दांत के आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम बेसिकली उनको यही समझते हैं नॉर्मल भाषा में कि मसूड़े हैं, तो मसूड़े जो हैं वो नीचे जाने लगते हैं यानी कि हड्डी से चिपकने लगते हैं
12: जी,
13: तो वो एक शुरुआती लक्षण होते हैं पायरिया के। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पायरिया क्या, पायरिया को कैसे या किस वजह से होता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि ये समझना कि पायरिया आखिरकार होता क्या है
12: जी।
13: तो पायरिया क्या होता है, पायरिया एक्चुअली एक कंडीशन होती है
12: जी,
13: जिस कंडीशन में आपके जो भी दांत हैं, मसूड़े हैं और ये जो सारी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं
12: जी,
13: जो दांत से जुड़े हुए हैं, ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपके हटने लगते हैं
12: जी।
13: तो इस वजह से क्या है, अल्टीमेटली आपके दांत जो हैं वो हिलना चालू हो जाते हैं
12: जी।
13: तो जब ये दांत हिलना चालू हो जाते हैं तो ये भी एक अलग अलग स्टेज होती है दांत हिलने
12: जी,
13: की
12: जी।
13: जैसे अभी बहुत थोड़ा सा हिल रहा है तो हम उसको हमारी जो डेंटल भाषा है उसमें ग्रेड वन एक बताते हैं, ये हमारा मापदंड होता है एक। अगर थोड़ा ज्यादा हिल रहा है कि भाई साइड वाले जो उसके बगल वाले दांत हैं उनसे भी काफी आगे और पीछे हो रहा है
12: जी जी,
13: तो उस केस में हम ग्रेड टू मोबिलिटी का उसको नाम देते हैं, और उससे ज्यादा अगर होता है तो ग्रेड थ्री मोबिलिटी का नाम देते हैं
12: जी।
13: तो देखो पायरिया जो कंडीशन है ऐसा नहीं होता है कि आज मैं आपको बोल दूं जी पायरिया हो गया है और ये टूथपेस्ट यूज कर लीजिए इससे आपका पायरिया ठीक हो जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, और ऐसे कभी भी पायरिया ठीक नहीं होता है
12: जी।
13: पायरिया की जो कंडीशन अगर आपको डेवलप हो चुकी है या किसी को भी डेवलप हुई है, उसको ठीक होने में, उसको ठीक होने के लिए कम से कम एक साल
12: जी
13: चाहिए, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर केयर करते हैं तो। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये बीमारी वापस से आपको घेर लेगी और उस कंडीशन में वापस से आपको उसी स्टेज पे ला करके खड़ा कर देगी जहां पे आपने शुरुआत की थी
12: जी। श्रोताओं फिलहाल बढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे म्यूजिकल ब्रेक के लिए, और अगर साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप मैसेज या SMS के थ्रू पूछ सकते हैं 8432665588 पर, और डॉक्टर साहब उस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में देंगे आपको। अभी बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने की ओर, सुनते रहिएगा दोस्तों 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: से आपका स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप इस वक्त सुन रहे हैं दोस्तों तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी RJ सनी के साथ। श्रोताओं, जैसे कि आज हम तंदुरुस्ती मौज मस्ती के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पायरिया के बारे में, और आज हमारे साथ हैं T32 दांतों के अस्पताल से डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि पायरिया के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, अब साथ ही दोस्तों मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, पायरिया होने के क्या कारण होते हैं जिनको जान करके हम उसको होने से रोकते हैं।
10: देखिए, सबसे अहम कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि दांतों के अंदर जो गंदगी होती है वो सबसे अहम कारण होता है पायरिया की तरफ बढ़ने का। इसके अलावा भी और भी लक्षण और भी कॉजेज इसके होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन C, D या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से भी पायरिया हो जाता है
9: जी।
10: इसके अलावा अगर हम बात करें कि हार्ड ब्रशिंग, यानी कि जो ब्रशिंग आप करते हैं, जो ब्रश आप यूज करते हैं, अगर वो काफी टाइम से आप बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश कर रहे हो
9: जी,
10: तो उसकी वजह से भी पायरिया की समस्या होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसके बाद भी हम बात करें कि हाँ और क्या कारण हो सकते हैं, तो पायरिया होने का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो कि मेडिसिन्स पे होते हैं, किनकी, ब्लड शुगर, यानी कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी पहले से होती है और जो कार्डियक की दवाइयां ले रहे होते हैं
9: जी,
10: जिनको कार्डियक समस्या होती है और वो उसकी दवाई ले रहे होते हैं रेगुलर, तो उन केसेस में भी पायरिया होने की कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है
9: जी,
10: क्योंकि वो ऑलरेडी दवाई ले रहे होते हैं और इन दवाइयों के एक साइड इफेक्ट होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो दांतों के पीछे डिपॉजिट्स होना चालू कर देते हैं
9: जी।
10: तो इस कंडीशन में जो आपके गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, वो पहले ही आपके एक बीमारी से घिरे हुए हैं। जैसा कि अगर हम बात करें जो आपकी होती है शुगर की जो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है आपके जो घाव हैं वो प्रॉपरली हील नहीं होते, या आपकी बॉडी की हीलिंग जो आपकी टेंडेंसी है वो थोड़ी खत्म हो जाती है
9: जी।
10: तो आपके मसूड़े जो हैं वो अपने आप को हील नहीं कर पाते उस चीज को लेकर के, तो ये भी एक कंडीशन होती है। किसी प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से, जो आपकी बहुत लंबे टाइम से मेडिकेशन चल रही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनको हम अगर बात करें, तो इनकी वजह से भी कई बार पायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है
9: जी। श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर संदीप ने आपको बताया कि पायरिया होने के क्या कारण होते हैं, आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे म्यूजिकल ब्रेक की ओर। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है, ताकि हम सबके जो दांत हैं वो भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं 8432665588 पर। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे हैं आप? और गुड इवनिंग भिवाड़ी, क्या हाल है जी? हाँ जी, आपका ये मुस्कुराता हुआ सा चेहरा देखने के लिए तो मैं हर शाम को खिंचा चला आता हूँ। और आप भी जब ये फटाफट से ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए दौड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट गाड़ी आपको बहुत आराम से चलानी है, तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो लगा लो, नॉट फॉर पुलिस बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है? और जो को पायलट पे बैठा उसको भी बोलो, बल्कि आप धीरे धीरे पीछे वाली सीट पे जो बैठे हैं उनको भी प्रमोट करना शुरू करें कि भैया आप भी सीट बेल्ट लगा लो। क्योंकि ऐसा बोल दो कि यार मैं गाड़ी अच्छी नहीं चलाता हूं इसलिए लगा लो, बट लगा लो। और अगर आप टू व्हीलर पे भी ट्रैवल करने वाले हैं तो प्लीज हेलमेट जरूर पहनिएगा, और अपने साथ जो आपके पीछे बैठा हो उसको भी बोले स्टाइल ना मारे बिल्कुल भी, ठीक है? हमें पता है आप जॉन अब्राहम लगते हैं धूम मचाले वाले, पर वो भी हेलमेट पहनते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है? उन्होंने हेलमेट पहना था, हर कोई हेलमेट पहने, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई मिसहैपनिंग होती है ना, खासकर टू व्हीलर्स के साथ, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो फॉल डाउन हो जाते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं। वहां पे बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि वो डैमेज आपके सर पे हो जाए या वो चोट आपके सर पे लग जाए और दिक्कत हो जाए। तो हम वो कुछ नहीं चाहते, हम बस आपसे सिंपल से रिक्वेस्ट करें, हेलमेट पहनो, ध्यान से व्हीकल चलाओ, इतना तेज ना भगाओ, हौले हौले हौले हौले, वो गाना है ना शाहरुख खान वाला, हौले हौले हो जाएगा प्यार, वैसी हौले हौले आप घर पहुंच जाओगे, क्या जल्दी है? जल्दी है भी तो भी गाड़ी तेज ना चलाओ, बस सुनते जाओ 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शो अभी शुरू हुआ है, अगले दो घंटे आपकी और मेरी मीटिंग एकदम फिक्स है। बढ़िया बढ़िया गाने लगा रखे हैं मैंने आपके लिए, बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज तो, बल्कि मैं पॉजिटिविटी का डोज भी लेकर के आया हूं। और इसी के साथ अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपको कोई गाने सुनने हैं, आपको किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है या कोई भी बात है, आप हमें कॉल करें 8432665588। इसको फर्स्ट डायलिंग पे रख लो, जब भी कोई बात है, कुछ बोलना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी सुनाना है, यही वो नंबर है। आपकी बात होगी डायरेक्ट हमसे और हम आपके मैसेजेस ऑन एयर करेंगे, पूरी भिवाड़ी को सुनाएंगे। तो सुनते रहे 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। लगा रखे हैं बहुत ही बढ़िया वाले गाने।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MT रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: ये गाना सुन के आपको लगा था ना कि जिम जाने का टाइम आ गया है? मतलब हर शाम को कहीं आपको भी ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि यार चलो कल से अब हम जिम जाएंगे, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, कल से हम रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, योगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमाका सब सोच लेते हैं, बट वो कल नहीं आता है। हम सब सोच लेते हैं लेकिन वो कल जो होता है वही नहीं आता है। बस तो हम क्या करें, हमारी तो कोई गलती नहीं है क्या? आप भी उसी कैटेगरी में? तो मेरी जान चिंता ना करें, आप अकेले नहीं है, मैं भी आप ही के साथ हूं। ऐसा होता है कि यार मन बहुत करता है बट वो सुबह उठ करके जाना या शाम को जाना, वो जाना ही नहीं हो पाता है क्योंकि हम सब कल पे टालते हैं, आज पे कोई काम सोचते ही नहीं है क्योंकि आज तो हमारा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। देखो शाम को आपकी और मेरी मीटिंग फिक्स है, उससे पहले आप ऑफिस से फ्री नहीं होते, उसके बाद आप सोचते हो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, और जो भी थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना वगैरह आप सब करते हैं, तो बचा टाइम सुबह का। अब सुबह में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जब रात को जल्दी सोते नहीं है तो सुबह जल्दी उठते नहीं है, और जब सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है तो फटाफट से मन करता है बस भागो ऑफिस, टाइम पे पहुंचो। इसी सब साइकिल में ना हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है, बचा एक संडे। संडे तो भैया सोने में, इधर उधर शॉपिंग में, मैडम की सारी फरमाइश पूरे करने में, इन्हीं में निकल जाता है, तो बचा ही कहां दिन। पर हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खोते जा रहे हैं इसी के साथ, वो है हमारी हेल्थ। देखिए हम सब जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, व्हेन हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, ये सब हमने पढ़ा है, हमने सुना है। और रियली जिसको कोई भी तकलीफ है, आप किसी से भी बात करें, जिसको भी कोई तकलीफ है ना, वो यही प्रे करता है कि यार काश मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो। पर जब आपके और मेरे पास टाइम है तब हम आलस दिखा जाते हैं, हम काम चोरी कर जाते हैं, तो क्यों ना हम सही में शुरुआत करें। मैंने एक्चुअली जिम जाने का नहीं सोचा है, मैंने ये सोचा है कि मैं घर पे ही अपने जो फिटनेस साइकिल है ना उसको इम्प्रूव करूंगा। मतलब सुबह उठूंगा, प्राणायाम करूंगा, योग करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, चाहे 10-10 मिनट से ही शुरू करूं, बट मैं करूंगा। कुछ नहीं तो 10 पुशअप से ही शुरू करूंगा। पर आप क्या करेंगे, आप भी कुछ डिसाइड करो। ठीक है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन या न्यू मंथ रेजोल्यूशन छोड़ो, जो भी ये सब बातें ना, ये रेजोल्यूशन एक्चुअली हम कर नहीं पाते हैं, तो वो चीज जो हम कर सकते हैं वो है खुद से वादा, और उसी के साथ उतर जाओ बस मैदान में, बस यही सोच करके कि यार अब कुछ नहीं है, बस अब खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योग, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन, तो वो भी इंक्लूड करें। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा एक घंटा सिर्फ जिम में ही दे दें, बल्कि थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत योग भी करें, और मेडिटेशन जरूर करें, वो बहुत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथों पैरों की चेस्ट की मसल्स तो हम बना लेते हैं बट अगर ब्रेन ठीक नहीं होता ना तो ये सब कुछ काम नहीं कर पाती। बहुत जरूरी है हम अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को एकदम बैलेंस्ड रखें। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात ना एकदम अच्छे से मानोगे, मैं भी खुद इंप्लीमेंट करूंगा, और आपको भी बोल रहा हूं कि भैया मैं आज से ही शुरू कर रहा हूं, कल पे नहीं डाल रहा हूं, तो आप भी आज ही से शुरू कर दो। ऑफिस से घर पहुंचो और फटाफट ड्रेस चेंज करके, बच्चों से बात बात करके, जो भी एक्टिविटीज करनी फटाफट करो, और एक बार कोशिश करो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग से ही शुरू करो, बट करो, है ना। सुनते रहे 90.8 FM 24, बढ़िया से दिनचेक से गाने लगा रखें, उनसे आपका मन भी करेगा कि यार आप ना थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करो।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
4: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
4: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
6: तो कब चले?
5: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन।

0: आजाद अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
1: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
2: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
4: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
4: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
5: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: शाम की

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। शो का नाम है इवनिंग टी विद शर्मा जी, आप है अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी कैसे हमें अपने दिनचर्या में थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा फिटनेस के लिए निकालना चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज नहीं है जो हमें या हमारी बॉडी को फिट रखने में हमारी मदद कर सके, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी डाइट भी। हम अपनी डाइट कैसी रखते हैं, हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या हम बहुत ज्यादा बाहर का फूड खाते हैं या हम बहुत ज्यादा हेवी फूड खाते हैं, उससे भी हमारी बॉडी की जो शेप है या हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। आप अपने दिनचर्या में या आप अपनी नॉर्मल डाइट कैसे रखते हैं या आप अपनी डाइट कैसी रखते हैं, बहुत हेवी रखते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी रखते हैं, बहुत लाइट रखते हैं या कैसे? जो आइडियल तरीका कहा गया है वो है कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे हेवी होना चाहिए, लंच इज मॉडरेट एंड डिनर इज एकदम लाइट, मतलब आप बहुत ही हल्का डिनर खाएं। इसके ऊपर कई लोगों ने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया कि हम रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़े थोड़े मील लेते रहें, जैसे आप ब्रेकफास्ट करें फिर उसके बाद लंच करें और सीधा डिनर पे जाने से पहले बीच में भी आप कुछ खा लें, जैसे थोड़े से फ्रूट्स खा लें या कुछ हल्का सा ले लें, जो हम कहते हैं ना चाय के साथ साथ में क्या, जैसे बिस्किट्स या कुकीज या टोस्ट या क्या, वैसे ही बहुत छोटी छोटी मील्स लेना ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इन छोटी छोटी मील्स में ना आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ही आप घर पहुंचे और चाय ले रहे हो तो आप साथ में पोहे ले लें, कोई भी लाइट इजीली मेड फूड ले लें जो बहुत ही लाइट भी रहे और बहुत हेवी ना हो, या फ्रूट ले लें। ठीक है, कई फ्रूट्स के लिए कहा जाता है मॉर्निंग में नहीं खाने, इवनिंग में नहीं खाने, ये नहीं करना वो नहीं करना, बट जो आपको ठीक लगे आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर आप उसको इंक्लूड करें। ज्यादा पेट को खाली रखना भी दिक्कत है और ज्यादा भरा रखना तो भाई साहब एकदम पेट फूल के चार गुना हो जाता है, फैमिली पैक आ जाता है सिक्स पैक की जगह, फिर आप उसको कम करने के लिए इधर उधर भागते फिरोगे। तो अच्छा है थोड़ा डाइट भी नॉर्मल रखो, और उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, जब भी आप कुछ स्पेशल या कुछ नया खाएं, जैसे मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप मैंगो फेस्टिवल अपने घर में मनाएं, जब सब बैठ करके आम खा रहे तो आप मुझे ही बुला लें, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही कहीं पार्टी पे जा रहे हो हमें इन्वाइट कर लो, एफएम की पूरी टीम आपके साथ पार्टी करने की आएगी। अगर आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आपका कोई भी स्पेशल डे है, हम है ना आपके साथ, आपके सारे स्पेशल डेज को एकदम और स्पेशल बनाने के लिए। चलिए आपके कॉल का मैं वेट करता हूँ, छोड़े जा रहा हूँ आपको इन बढ़िया से गानों के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
2: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
2: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
10: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
11: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
12: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। और अभी जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये ना आज का पॉजिटिविटी वाला डोज है कि हम अपना काम रेगुलरली करते रहें, बड़ी शिद्दत से करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको उस चीज का रिजल्ट मिलता ही है। ऐसा ही हुआ डॉक्टर मुनीश्वर दावर के साथ, जो जबलपुर से बिलोंग करते हैं, एमपी से। वो 1972 से 2 रुपए में अपने पेशेंट को देखते हैं और आज की डेट में वो अपने सभी पेशेंट्स को 20 रुपए में देख रहे हैं। देखिए, मात्र 20 रुपए में, जहां 20 रुपए में आज की डेट में शायद कुछ ढंग का आइटम खाने को भी ना मिले, वहां वो 20 रुपए में अपनी कंसल्टेशन दे रहे हैं और डेली 200 पेशेंट्स को कम से कम देखते हैं। ही इज वेरी एजेड नाउ, 77 ईयर्स ओल्ड, और आज भी ये सब काम वो डेली कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट द्वारा, और एक्चुअली ना वो डिजर्व भी करते हैं। जब उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और लोग बाग, तब उन्होंने बोला कि हमें ना हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, लोगों की मदद करते रहने चाहिए। वन और दी अदर फाइन डे आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको कभी हताश नहीं होना है, आपको बस शिद्दत से लगे रहना है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी ऐसा मौका हो, जो आपने अभी करके भी दिखाया पूरे भिवाड़ी को हम, तो ऐसा ही अगर आपको मौका फिर मिले कहीं भी किसी की मदद करने का, तो प्लीज मदद करें। छोटी सी मदद जो आप आज के दिनों में कर सकते हैं वो है अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में पक्षियों के लिए पानी रखना। ये एक छोटी सी चीज उन पक्षियों के लिए ना बहुत बड़ा वरदान बन जाएगी, जब वो आपकी बालकनी में वो स्वीट सी वॉइस प्रोड्यूस करेंगी, आपके गार्डन्स में चहचहाती हुई दिखेंगी, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर वो हो सकता है तो वो करें, या जो भी आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं और आपको उसमें पूरे भिवाड़ी की मदद चाहिए, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8432665588, और हम और पूरी भिवाड़ी आपको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगी। तो अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं प्लीज हमें बताएं, हम पूरे भिवाड़ी के साथ उस चीज को शेयर करेंगे। सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
6: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसिस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
5: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
5: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
10: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
11: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
12: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
13: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
12: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना।
13: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: शाम की

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। शो का नाम है इवनिंग टी विद शर्मा जी। और अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंस जो मुझे भी अपने बचपन की याद दिला दिया और जरूर आपको भी याद दिलाएगा। जब हम अब किताबें कलेक्ट करने जा रहे थे तो सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों की अटखेलियां, अपनी शरारतें डिस्कस कर रहे थे और एक पॉइंट जो सबसे आगे निकल के आया वो था पीटीएम, जो अभी भी हो रही होंगी, कि जब बच्चे ना ये नहीं चाहते हैं कि उनकी टीचर का उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, क्योंकि तब टीचर बताएगा कि क्या क्या शैतानियां बच्चे स्कूल में करते हैं और पेरेंट्स बोलेंगे क्या क्या शैतानियां बच्चे घर में करते हैं, ताकि वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन रहे और बच्चे को दोनों तरफ से कंट्रोल करा जा सके कि वो ज्यादा शैतान ना हो जाए। तो इस चीज के ऊपर ना बड़े फनी फनी इंसिडेंसेस थे। तब मुझे याद आया कि यार बचपन में ना हम लोग भी, मतलब मैं, मेरे फ्रेंड्स भी यही कोशिश करते थे कि अगर पीटीएम हो तो पहली बात तो पेरेंट्स को पता ना चले, और अगर पता चल भी जाए तो कोई जाए ना, क्योंकि फिर हमारी टीचरें जब सुनाना शुरू करती थी आय हाय हाय, और उसके ऊपर हमारे पेरेंट्स भी, मतलब मेरी मम्मी तो कहती थी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बल्कि ये तो ये और करता है, ये और करता है, ये और करता है, अपनी तरफ से और बातें बताती थी। तो वो जब दोनों डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता था ना, तो कई बार ऐसा होता था कि किसी किसी बच्चे की तो पिटाई भी हो जाती थी वहीं पे ही। पेरेंट्स कहते थे मारो, टीचर मार देती थी उनके सामने। ठीक है, वो आज की डेट में हमें हंसी लगती है, लेकिन उस टाइम बड़ा ही ऐसा लगता था यार प्लीज कोई पीटीएम में ना जाए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डर था बच्चों में। तो वो ना जब मैं फैमिलीज के साथ मिलने जा रहा था, बुक्स कलेक्ट करने जा रहा था, तो काफी फैमिलीज ने हमें ये चीज शेयर करी और हमने सोचा कि ये चीज तो हमारे साथ भी हुई है। तो भिवाड़ी, क्या आपने भी कभी वो फियर फेस किया है? कभी आपके भी ऐसा लगा था कि यार इस बार नंबर कम आए हैं? जिन बच्चों के अच्छे आते हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, देखो वो तो चाहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग हो ताकि उनको प्रेज करा जा सके, उनकी तारीफ करी जा सके, टीचर भी कहता है वाह क्या बच्चा है, पेरेंट्स भी कहते हैं जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और सब मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं या जो कुटने के लिए तैयार बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं यार मीटिंग ही ना हो, और मीटिंग हो तो हमारे पेरेंट्स ना जाए, कोई बहुत जरूरी काम आ जाए, या हमारी तबीयत खराब हो जाए, हम ना जाए, ये दोनों मिलमुला करके आ जाए, कम से कम हम तो बचे रहे। कहीं आप भी ऐसे नहीं थे? कॉल करें हमें ऑन 8432665588 और आप ये बताएं कि आप पीटीएम को कैसे देखते थे। आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, आप एवरेज थे, या आप लो स्कोरर थे, पर आज आपको हंसी आती है कि किस हिसाब से आपने वो पीटीएम पे बचने के बहाने ढूंढे थे। आपके कॉल का मैं वेट कर रहा हूं कि आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, और अगर कुछ अच्छी हुई तो क्या पता कोई बच्चा सुन करके उसको अप्लाई भी कर दे, है ना। मदद करते रहो सबकी, खैर इसमें कोई मदद नहीं है, इसमें तो शैतानी है, बट स्टिल आप अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। सुनते रहें 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। Jay.

0: मॉडलिंग, पीआरपी, आरएफ, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
1: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS।